0: ठीक है और
1: समझ गया बीबी ये।
0: हाँ चलो निकल रहा हूँ मैं, गाड़ी खड़ी है पार्क। चलो ठीक है मम्मा,
2: अच्छा
0: निकलता हूँ।

0: जब टेकन खेलना मैंने स्टार्ट की थी तब मैं कोई 7-8 साल का था, और मेरे बिल्कुल घर के सामने हुआ करती थी शॉप गेम की, फ्रूट्स की दुकान थी ना, मतलब बाहर उसके फलों की दुकान थी और फलों की दुकान के अंदर जाके गेमें थी, और गेमों में लाइन से कुछ 3-4 गेमें लगाई थी। पहले पे टेकन थी, फिर दूसरे में दूसरी मिशन गेम्स जो होती हैं जो बच्चे खेला करते हैं, इस तरह से करके एक शॉप थी। तो अपने कज़न्स के साथ स्कूल से वापसी में जाया करता था गेम खेलने।
1: छोटा सा था तो वीडियो गेम में चले जाना, शुरू से इसको शौक था गेमिंग का ना।
0: लोग कहते थे कि अरसलान ना एक बच्चा आता है सबको हराता है, इस तरह करके थोड़ी एक इज्जत थी मेरी। वहाँ पे मुझे कोई नहीं हरा पाता था, मतलब वहाँ पे अगर 10 लोग आते थे रोज़ खेलने के लिए मेरी एज ग्रुप या मेरे से बड़े, तो मैं उनको इजीली हरा लिया करता था। तो थोड़ा फेम मुझे मिलना स्टार्ट हो गया।
2: In the dim, smoky arcades, Arslan Ash began making a name for himself. But in Pakistan, gaming was still seen as a useless distraction, and arcades were thought of as bad places.
0: Even कि मुझे बहुत मार भी पड़ा करती थी, मुझे अभी भी याद है कि जो मेरे एक भाइयों में से एक भाई थे तो वो मुझे बहुत मारा करते थे। उनके एक दफ़ा तो आर्केड सेंटर के अंदर जाकर मुझे बहुत मार पड़ी। और मैं भागने की कोशिश कर रहा था कि मैं चला जाऊँ कि मेरी बिस्ती हो रही है वहाँ पे, जो लोग मुझे इज्जत करते थे वो कल को मैं अगर गया तो मेरी बिस्ती करेंगे वो, लेकिन उन्हें वहाँ पर जाके मारा। तो उसके बाद मुझे एक दो दिन में गया भी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, फिर बेशरम था, मैं जाना भी था, मैं चला, लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन फिर दोबारा 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ, मार पड़ी बहुत ज़्यादा अब्बू से भाइयों से। तो
1: मैं जाके ले आती थी, वो रहती थी मैं कि उसको मारी ना पड़ जाए, तो मैं ना इसके पापा के यहाँ से पहले पहले इसको घर ले आओ।
3: अरसलान ने भी काफ़ी मतलब की मार खाई है सब ने। मुझे जब घर से निकाल देते थे तो मैं अरसलान की तरफ आता था,
4: हम छुप छुप के खेलते थे, हमें मार भी पड़ी है काफ़ी। हमने एक दूसरे से मिलना है गेमिंग में जाना है तो छुप छुप के जाते थे कि तुम्हारे घर वालों ने कहा है हमारे बच्चे से ना मिले, ये उसे गेमिंग में लेके जाते हैं।
3: निकाल देते थे हमें घर वाले, उनके पास आखिरी हल यही होता था कि इनको निकाल दें, तो हम खुश हो जाते थे, ठीक है निकाल दिया अब सारा दिन गेम खेलेंगे।
0: आई थिंक उनको गेमिंग पसंद नहीं थी क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था वहाँ पर। वहाँ पर जिस तरह की मैंने बताया कि वहाँ पर लोग अच्छे नहीं आया करते थे, बहुत बुरे लोग आया करते थे। अब तो ऐसे ही नहीं है, अब तो अच्छे बन चुके हैं क्लब्स, लेकिन तब लोग बहुत बुरे होते थे वहाँ।
2: Arslan's obsession with gaming was hard for his family to accept. For many Pakistani parents, gaming as a career was unimaginable, and the pressure to follow a traditional path was heavy on him. But Arslan held on to his dream, proving that with passion and hard work, even the wildest dreams can come true.
5: Unbelievable! Absolutely unbelievable!
6: Arslan Ash is the real deal. That dude is the real deal.

0: यार टूर्नामेंट का सीन है कि सबसे जो पहली स्टेज है वो है कि आपने अपना ग्रुप पिक करना है आपका। मैं लास्ट 2 बार गया हूँ तो 4 ग्रुप होते हैं ए बी सी डी, तो मैं हमेशा ए में आ गया हूँ। मतलब ए
1: अच्छा
0: बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत अंत की है मेरे लिए, तो मैं बी सी डी में से कुछ रख करूँगा। ए में लग सकता है ईजी भी हुआ मेरे लिए, बहुत ईजी भी हुआ, फिर भी ए में नहीं जाना। पहला तो मैंने इसलिए चला गया, मैं ए फॉर इस्लाम ए में, तो नी पीछे से आ गया कितना इस्लाम भी उलसन भी आ गया, मतलब सारे टॉप के प्लेयर मेरे ही ग्रुप में आ गए। इस साल मैंने कहा नहीं, मैंने फिर लास्ट टाइम वो लकी ड्रा हुआ था, लकी ड्रा में मेरा ए आ गया। इस बार मेरी फर्स्ट रैंकिंग है, तो अब मैं खुद चेक कर सकता हूँ कि मैं किस ग्रुप में जाना चाहता हूँ।
2: Arslan Ash's journey was born from hardship.

0: At a young age, he suffered the heartbreaking loss of his father, leaving his mother to raise him and his siblings alone.
1: इसके पापा तो रेलवे में थे पेंशन ही आनी उसमें क्या होता है कुछ मैंने फिर घर में मेहनत करनी सिलाई वगैरह करती थी
2: तो मैं तो नहीं कमाता था मैं तो था भी 12 साल का और हम क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो तब वसाइल भी नहीं थे पैसे भी नहीं थे बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था घर में भी
0: But from this struggle came an unexpected blessing. The dim glow of arcade screens became his escape. And in the game's pixels, he found a world where he was in control.
2: तो मेरे लिए ये हुआ कि मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता खुल गया कि मैं ज़्यादा गेम खेलने लग पड़ा ज़्यादा बाहर जाने लग पड़ा ज़्यादा लोगों से मिलने लग पड़ा रात को टेंशन होती थी हाँ 5 मिनट के लिए जाना तो 5 मिनट के लिए पहले 5 मिनट बाद ही घर आना अब तो 5 मिनट के लिए घंटे बाद घर आना तो मसला नहीं
1: पहले इसके पापा तो इधर दूर नहीं जाता ज़्यादा करीब करीब ही रहना इससे मैंने जाके लिया था तो बस फिर बच्चे सवाल हो जाते कहते कि अब कौन रोकने वाला चुप करके निकल जाना ये फिर इसकी तो वजह ही बहुत थी कि मैंने ये भी खेलनी है मम्मा जो मर्जी कर लें तो मैंने ये नहीं छोड़ी
2: उस दिन उनको बहुत दुख हुआ था जिस दिन मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं है और एक बंदा आप पे सारा कुछ लगा रहा है सारा रात सलाइयाँ करके सब कुछ करके कि बंदा पढ़ ले और कुछ बन जाए अपनी लाइफ के अंदर
1: मैंने कहा कल मामा मैंने ये करना मैं कहा पढ़ लो तुम अच्छी तरह पढ़ लो कुछ बांध दो
2: तब मैं दिल में सोचा था कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि मैं प्राउड फील कराऊँगा मम्मा को लेकिन वो कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है मैं किस तरह यकीन मतलब आप तसल्ली दे सकते हो लेकिन जब तक आप खूब करो ना तो यकीन नहीं आता लेकिन मैंने कहा नहीं मैंने रिस्क लिया लाइफ के अंदर मैंने फिर बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया मैं कहा मुझे एक बार मौका दें आप अगर मैं नहीं कर सका तो मैं जो कहोगी ज़िंदगी के अंदर वही करूँगा अगर मैं नहीं जीत सका तो जैसे जैसे कहोगी वैसे ही करूँगा मैं कुछ भी नहीं करूँगा इसके अलावा मुझे बस एक मौका ज़िंदगी में चाहिए अपने लिए
0: The arcades became his safe place, turning his pain into strength, sharpening his skills against endless challenges.

0: his rapid rise, while Arslan watches closely.
1: I don't know if it was like destined to, you know, like I just was winning. Like yesterday we played a practice tournament against Arslan. My first hard match was against Arslan and I, you know, won that. So I was like, wait, what's going on here? You know what I'm saying? Like, so, man, it's just, it feels crazy. Something's in the air, you know?
2: We thank you guys for staying up with us, watching from wherever in the world you're watching from. But we'll see you guys in the morning. Look forward to the violence and the chaos that is going to go down in these group stages. And we'll catch you guys tomorrow. Everybody be easy.
3: Yeah, Jokrish qualified kar gaya aaj LCQ tha uske andar se tension nahi hai mujhe lekin us wo young player hai aur kafi acha khelta hai usne haraya tha lekin main kafi confident hoga ki mere pool mein wo aaya to main use hara sakta hu lekin phir bhi threat to hai wo aur main chahunga ki mere pool mein wo na aaye kyunki maine baki sabke khilaf to taiyari ki hui hai bahut achhi to dekhte hain but congratulations to Jokrish for qualifying.
0: Arslan Ash was always a risk taker, constantly searching for new challenges. He dared to dream beyond his city's borders. While others saw gaming as a dead end, Arslan saw it as a way to greatness. Even when no one believed in him, he believed in himself.
3: I remember one time, I was sitting at the Game Center. So I was saying to Imran, I think that I am not made for this. मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बनाई नहीं हूँ यहाँ का लेवल और मेरे लेवल में बहुत फ़र्क है मैंने बाहर जाना है और मैं ना बाहर जाऊँगा और मैं जीतूँगा
4: पर तब हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे होते कि कोई अपनी टिकट खरीद के दुबई भी चला जाए
5: तो मैं इसकी बात पे यकीन नहीं किया लेकिन मैंने कहा शायद इसने अहम ही बात कर दी है लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके पास तो पैसे ही नहीं है ये कैसे जाएगा
0: He knew greatness wasn't defined by where you start. It's about how far you're willing to go.
3: हम जिस सेंटर में खेला करते थे उस सेंटर वाले आदमी से मैंने कहा कि ना मेरे पास तो पैसे नहीं है मैंने बाहर जाना है और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो भी आता है उसे मैं हराता हूँ मैं जीतता हूँ तू मेरे पे पैसा लगाओ कहता मेरे पास तो पैसा नहीं है मैं कुछ करूँ कहा चलो मैं तुम्हारा पासवर्ड बना देता हूँ तो 5,000 रुपया उसने लगाया मेरा पासवर्ड बनवाया मैं उसके साथ ही गया उसने पासवर्ड बनवा के दिया फिर एक बंदा था दानी भाई उससे मैंने कहा कि दानी भाई जीतेंगे तो आधे पैसे आपके आधे पैसे मेरे मुझे बाहर भेजो जैसे करके कहता कि इसमें 20,000 की स्टिक मंगवा के दी आर्केड स्टिक जिससे आप बाहर प्रोफेशनली खेल सकते हो तो पाकिस्तान में वाहिद मैं बंदा था पहला वाहिद बंदा था जिसके पास स्टिक थी
0: इट वाजंट जस्ट अ जॉयस्टिक इट वाज अर्सलान्स मैजिक वांड थ्रू व्हिच ही कास्ट हिज गेमिंग स्किल्स फॉर द वर्ल्ड टू सी
3: टिकट मेरी दानी भाई ने कराई थी खर्चा वगैरह घर वालों ने दिया मुझे तो पहला टूर्नामेंट मैं गया ओमान में खेल पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा था जहाज में बैठा काफ़ी घबराया भी जब बोल रहा नीचे आ रहा है पहली दफ़ा और ओमान में फिर मैं रुका जो दानी बे के दोस्त थे कुछ जहाँ पे आप देखा होगा बाहर जाते हो फैक्ट्री के लोग बैठे होते हैं उन्होंने हॉस्टल बुक किया होता कमरा वहाँ पे बैठे होते हैं साइडों पे वहाँ पे मैं ठहरा टूर्नामेंट खेलने गया वहाँ पे मैं जीत गया
0: Arslan's first win came easily. The competition in Oman wasn't tough. And the prize was only a modest gaming console. But within that small victory, Arslan saw something much bigger. FVC Major 2018 in Malaysia. A tournament where he'd face legendary Korean and Japanese players he'd only admired from afar. This wasn't just an opportunity. It was his moment to prove he could compete with the world's best.
3: I went to the tournament. पहली दफ़ा कोरियंस को देखा जापनीज को देखा उल्सान को देखा सबको मैं हरा रहा था तो वहाँ पे जिंडिंग कोरियन टॉप प्लेयर है वो आया मैं इससे कहा मैं क्या मसला खेलो FT ना FT खेल रहा तो उल्टे सीधे करैक्टर ले रहा मतलब इन्जॉय कर रहा है कि हारा जीत रहा कोई मसला नहीं है
0: इन टेकन FT स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टू 10 मीनिंग द विनर इज द फर्स्ट टू विन 10 राउंड्स टू क्लेम द मैच
3: मैंने किसी को कहा यार ये लोग सीरियस नहीं खेलते कहते नहीं टूर्नामेंट में सीरियस खेलते मैं कहा पता नहीं टूर्नामेंट में मिलता कि नहीं मिलता ये मुझे मैंने इसको हराना है सीरियस करेक्टर लेके तो उसने आईडी लिया आईडी का प्लेयर था उससे मैंने बहुत बुरा मारा वो लोग परेशान हो गए कि जंडिंग ने आईडी लेके हार रही है कहते वे आर यू फ्रॉम मैं कहा पाकिस्तान तो वो मैप पर गूगल पर सर्च करना पड़ा पाकिस्तान है कहाँ पे मतलब सुना है पाकिस्तान में भी गेम खेलते हैं
0: फॉर द फर्स्ट टाइम द टेकन वर्ल्ड हर्ड द नेम पाकिस्तान And it was Arslan Ash who made it happen.

0: हेलो। हाँ बस उठी हूँ मैं, तैयारी फुल है। और दुआ करना, मम्मा से भी कहना कि दुआ करें।
1: First and foremost, one of the greats, one of the goats, one of the best to ever do it. Please make some noise for Nii. Make some noise for Arslan Ash! The choices have been made, the groups have been filled, and you guys are about to see some good ass Tekken. And I know it's early, but make some noise!
2: Arslan Ash, ever the strategist, picked his pool wisely. No Nii or Atif Butt to face early on. The tension in the venue is intense as a round robin unfolds.
3: Final round. Fight.
2: The crowd's energy builds with each match. And Arslan knows his moment is approaching. But how did a young boy from Lahore learn to handle such pressure? To find that answer, we must turn back time. Malaysia, 2018.
4: So Ulsan going with the white Kazumi and Arslan. I didn't realize their names are pretty similar.
5: अब मेरा मैच है, मैंने कहा इसको तो मैं हरा लूँगा। मैं स्टेज पे हूँ, उल्सान वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, वो अपनी एलईडी पे, मैं अपनी एलईडी पे बैठा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, मैं टांगे मेरी शेक करने लग पड़े। मैंने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो इस बंदे को हरा लूँगा। पहले मेरी ऐसे ऐसे करके टांगे बहुत ज़्यादा तेज थे, कांपने लग पड़ी मेरी टांग, और मैं नर्वस हो गया। मैंने कहा यार ये क्या फीलिंग है, क्यों? और वो रिलैक्स है, वही बंदा, वही गेम। एक दिन पहले उसको मैं जीतने नहीं दे रहा, बहुत ही मैं नर्वस था। उसने सेम गेम की, कोई प्लान चेंज नहीं था, लेकिन मैं हार गया। तो फिर पता लगा कि यार इंटरनेशनल स्टेज पर खेलना और किसी कोरियन या प्रो के खिलाफ खेलना, ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। फिर मेरा मैच आ गया नोबी से, और नोबी के साथ भी सेम चीज़ हुआ। और फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं उससे भी हार गया ना, इस तरह बहुत लास्ट राउंड पे, लास्ट पॉइंट पे हार, तो मुझे पता लगा कि यार स्टेज की गेम और स्टेज का प्रेशर हैंडल करना और अपने आप को कंट्रोल करना, नर्व्स को कंट्रोल करना भी ये अलग गेम है। डजंट मैटर कि जितनी मर्ज़ी आप प्रैक्टिस करो, जितने मर्ज़ी आप अच्छे हो, जब तक आप स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, यू आर नथिंग।
2: Arslan Ash, known for learning from his mistakes, has overcome early challenges. Yet, the heat is on in New Orleans as Ulsan dominates Group A, securing a top 8 spot in the finals. With Group B matches about to begin, all eyes turn to Arslan Ash to deliver. Arslan feels the weight of expectations. Every win counts, but the road ahead is long and tough.
6: Look at this Group B, man. We have the four-time EVO champion, Arslan Ash, in this group.
7: We have to our next match, which is going to be a run back for the ages,
6: oh
7: MYK.
6: My goodness.
7: We gotta see, you know, if Al is gonna sit down and play against Arslan Ash, who's the player that he's worried about?
6: Let's find out.
8: So, 日本の予選でも一番そのトーナメントで意識してるプレイヤー、確実にやはり上位に上がってくるプレイヤーだったんで、
2: The bright lights shine down, and the crowd buzzes with excitement.
7: Pakistan, you already know, started playing with Tekken 6, best memory of Tekken 7, becoming a double EVO champion, best result in TWT 2023.
2: It was a high-stakes mirror match between Ao and Arslan Ash, both using Zafina and Kunimitsu, a character Arslan had owned into his secret weapon and good luck charm. Known for his mastery of female characters, choosing Kunimitsu seemed inevitable.
6: Favorite stuff from Tekken 7.
7: Ninja battle.
9: At
7: EVO, it just felt like, again, just momentum control completely in Arslan Ash's favor. A lot of really, really just compact play too.
6: Oh my goodness.
7: Wow.
2: The pressure was building, and Arslan could feel it in every breath. But with a final blow, he claimed a victory in the first match. The crowd erupted, but beneath the cheers, this moment carried a deeper meaning.
7: Arslan Ash, for so many players on this tour, especially so many of the qualified...
2: In a male-dominated society like Pakistan, where heroes are often men, Arslan Ash broke the mold.
9: अपने वक्त में बड़ा फेमस हो गया था कि वो लड़कियों से खेलता है और उसका इवन लड़कों ने नाम रख दिया था कि अरसलान बच्चियों वाला
10: लव्ज इस्तेमाल होता था बच्चियों वाला तो ये जो फीमेल्स करैक्टर खेलते थे ना मेल्स नहीं खेलते थे ये उनके लिए इस्तेमाल होता था
5: वो अजीब मेंटालिटी लोगों की थी तुम वो लोग बिस्ती फील करते थे कि यार हम लड़कियों से हारे हैं
11: माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबको अल्फा बनने की पड़ी रहती है तो यू नो अल्फा बॉयज हमेशा से मेल कैरेक्टर से खेलते हैं ठीक है तो ठीक है ना बॉयज को सूट भी करता है
5: और जो लड़कियों से खेलता था उस पे भी वो कहते थे तो बच्चे ना खेलने हैं मतलब समझ आ रही है आपको कि एक शेम होती थी क्योंकि और क्योंकि लोग उनसे खेलते नहीं थे लड़कियों से तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती थी उनके खिलाफ मतलब एक चीज़ आप करोगे ही नहीं तो उसके खिलाफ प्रैक्टिस किस तरह करोगे आप तो ये वजह थी कि मैंने उनसे खेलता गया और फिर मैं पाकिस्तान में जीता भी उससे जूलिया से फिर नीना से लीली से
9: क्योंकि उसको पता था कि लड़कियाँ इस गेम के अंदर बहुत तेज हैं लड़कों की नस्बत
12: फिर उनके पास प्लस फ्रेम ज़्यादा होते हैं उनके पास डैमेज ज़्यादा होता है यानी कि उनको टेकन में मेल की नस्बत जो है ना एडवांटेज ज़्यादा होता है वो इसलिए इनसे खेलता है
13: आई फील दैट दैट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट इन हाउ ही perceives not just himself but you know the sort of environment that he was brought around his mother was really back there to support him and he really reveres that sort of empowerment that came from her
14: ha zafina ka maine bataya tha maine kaha is character se khelo to wo jaise wo jump karti na ghoomti hai to wo bada acha mujhe laga na dekh rahi thi main isko khelte main kaha nahi ab ye naya character aaya hai to isse khelo
15: zafina ka maine pucha tha aap kyun khelte hain uske sath तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मा ने कहा था ये आप इसके साथ खेलो ज़फीना के साथ
13: आई डोंट थिंक दैट यू नो लाइक यू कुड प्रोबब्ली एवर कम अप विद अ कैरेक्टर दैट्स फीमेल एंड अरसलान वुड नॉट ग्रेविटेट टुवर्ड्स दे से इट्स गर्ल्स गेम नॉट इट्स ऑल स्किल अरसलान ब्रेकिंग मोल्ड सो इन मच इट विल Arslan Ash, you know, ever since he picked up Zafina and then moved over to Kunimitsu, he really started like mastering the character, finding the intricacy. And the Kokoma, he kind of just plays whoever's cheap, right? So let's find out what Kokoma feels about his performance in the CWT so far.
16: 좀 긴장은 솔직히 많이 되는 것 같아요. 왜냐면 마지막 철권 세븐의 이제 무대이기도 하고 당연하게 이제 이 자리에 밟았으니까 어떻게든 뭐 살아남을 수 있을까라는 걱정도 되고.
13: Zafina from Arslan and Fang from Kokoma.
2: Arslan, now fully confident, dismantled Kakuma's defenses with precision, pushing himself closer to his ultimate goal. The crowd roared as Arslan won the match.
17: So far undefeated in group stage play.
2: He shook off the pressure, his belief growing stronger with each step forward. In this final showdown, Arslan Ash isn't just chasing victory. He's determined to take the top spot, and he won't settle for less.
5: I think मेरे ज़हन में बात डाल दी गई थी मेरी मम्मी ने इसको मैं कहूँगा कि फर्स्ट आना हमेशा ना मुझे रात को पढ़ाई भी करती थी काफ़ी ज़्यादा कि फर्स्ट पोजिशन लेकर आनी है तो वो मुझे बड़ी ट्रिगर की मतलब जब छोटा होता है बच्चा उसके आप जहन में जो भी चीज़ डाल देते तो वो इस तरह से सोचना पड़ता तो मेरी जो मैंटेलिटी थी थिंकिंग थी मैं पहले तो बता भी था कि फ़र्स्ट आना होता क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब आके होगा क्या तो वो मेरे जो अंदर थिंकिंग थी ना ये वाली तो वो डिवेलप होना शुरू हो गया कि फ़र्स्ट आना है हमेशा स्कूल के अंदर तो मैं स्कूल में फ़र्स्ट आना शुरू कर दिया पहले मैं सेकंड आता एक दफ़ा सेकंड आया था तो मम्मी को पसंद नहीं आया शायद कहती नहीं एक दफ़ा फ़र्स्ट आना क्योंकि खुद भी अपने स्कूल में हमेशा फ़र्स्ट आया करती थी तो वो भी क्या करती थी कि तुमने भी फ़र्स्ट आना
14: बस पेपर होने ना जब हमारी क्लास में तो खुशी होती थी कि मैडम ने कहना नाम लेना दीजा तो बड़ी खुशी होती थी कि खड़ा कर देना कि ये फ़र्स्ट आई है तो इसी तरह था कि बच्चे भी सार कामयाब हो तो माँ बाप तो खुशी होती है
5: तो इस तरह ही गेम में मुझे फिर फाइटिंग गेम में काफ़ी इंटरेस्ट आया क्योंकि उसमें फ़ाइट कर रहे हो इसमें जीत हो रही है किसी कोई हार रहा है तो वो चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि यार जीतना है क्योंकि अगले को हराने का भी मज़ा आता था
2: Arslan Ash remains unstoppable in round robin. His momentum is undeniable. There's no turning back.
7: And Arslan Ash, 2-0 over Rife in
2: his next big challenge loomed. Anakin from the USA.
18: Anakin representing Atlanta, Georgia.
2: Backed by the roaring

0: के किस नी को हराया है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया पाकिस्तान से। तो वो चीज़ को एडजस्ट करते करते 3-4 दिन लग गए मुझे। फिर पाकिस्तान आया, लोगों ने बड़ी वाह वाह की कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया ये वो। तो अब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा तुमने नी को हराया। फिर इमरान की मुझे कॉल आई, मुझे अभी भी याद है, मैं एयरपोर्ट पर था। तो कहता है असलान तुम्हें याद है तुमने बात की थी पहले कि तुम हरा सकते हो नी को? और मैंने कहा हाँ मैंने कहा था। कहता भाई फिर तुमने आज ना पूरा किया। और मैं उस वक्त वाकई रोया था उसकी बात सुन के कि हाँ मैंने एकदम ख्वाब देखा था एक कि मैं बाहर जाऊँगा और तुम्हें भी यकीन नहीं किया था मेरे में। तो लेकिन कहता कि तुम्हें यकीन था अपने आप पे, तुमने किया है काम।
1: Now, with the stage set for the ultimate showdown, this is more than just a rivalry. It's destiny. Arslan Ash isn't only chasing a win. He's chasing a dream only he dared to believe in.
2: Look at this. This is the original Tekken 4 PlayStation. And Harada just signed it, one. And two, this is like the OG cases, bro. They're trying to get rid of physical media. So the fact that you have this, yeah, is actually, this is like an instant collector's piece now.
3: और भाई टेंशन कम हुई?
4: प्रेशर का बहुत टेंशन थी कसम से। अब आगे जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन चलो पूल तो क्लियर किया।
1: As excitement and nerves soar, Arslan waits to see who will move forward from Group C and D.
5: Is the next one. But before we get there, we got a chance to talk to Atif about how he felt about this Tekken World Tour performance. Let's take a listen.
6: इस साल में जो काफ़ी ज़्यादा जो टूर्नामेंट खेल चुका हूँ मैं पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में खेल चुका हूँ, तो मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और
1: जो क्रश पुश रेनिंग चैंपियन आतिफ बट टू द ब्रिंक।
7: They're making some noise out there.
1: But Atif barely escaped defeat, keeping fans on edge. For the first time in a long time, Atif looked vulnerable. Against all odds, Atif Bhatt, the reigning champion, failed to secure his place in the top 8. Atif Bhatt narrowly escapes defeat against Joe Crush. Atif Bhatt's loss to Low High shocked the arena, but the real drama unfolded in a nail-biting tiebreaker. A match that would decide his future in the tournament. The atmosphere was tense, every move critical, yet, in an unexpected twist, the strong contender fell short.
7: John Ding takes it, right to right.
8: Before top eight,
7: eliminate.
8: Before top eight,
7: eliminate.
1: Against all odds, Atif Bhatt failed to secure his place in the top 8.
0: To be very honest, I was happy. I wouldn't say that I was sad.
9: Pure gamer can never be anyone's friend. गेम के अंदर वो उसके साथ कम्पीट ही करेगा,
0: क्योंकि वो वाहिद एक ऐसा प्लेयर था जो कि मुझे हरा सकता था। अगर वो टॉप 8 में आ जाता, ग्रैंड फाइनल में आ जाता, तो मैं खुश भी था और एज अ फ्रेंड मैं उदास भी था। तो फीलिंग मिक्स्ड ही थी अगर मैं खुल के बात करूँ।
1: मीनवाइल अर्सलान्स फियर्स राइवल नी मेड इट टू द टॉप 8 दो फ्रॉम द लूजर्स ब्रैकेट, adding even more tension to their heated rivalry.
10: Looked like he's gonna be in there for tomorrow.
0: Aur nahi loser mein tha to isse achhi baat ho hi kya sakti hai. Wo to haar jata tha mere taraf se, main to dua hi kar raha tha ki nahi haar jaye. Aur main to chahta tha sab bhi haar jaye. Ab main chinchu.
1: Many dismissed Arslan's early wins as luck, but he took their doubt as a challenge.
0: Kisi ne mere zehen mein baat dali thi ki tum nahi ko जितना मर्जी हरा लो, जब तक उसे तुम बिग स्टेज पे नहीं हराओगे। मैं कहा बिग स्टेज क्या है, क्या है बिग स्टेज? किसी टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल में, स्पेसिफिकली ईवो के ग्रैंड फाइनल में तुम उसे हराओगे, तब तुम्हें लोग कहेंगे तुम सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो दुनिया के अंदर।
1: फॉर अ पाकिस्तानी लाइक अरसलान एश, द बिगेस्ट फाइट ऑफ्टन हैपेंस ऑफ स्टेज, गेटिंग अ वीजा। After endless struggles and near misses, he arrived in Japan just in time for his match. He fought through the loser's bracket, taking down top players. In the grand finals, he defeated Filipino Tekken legend AK, resetting the bracket and claiming victory. A win that shocked the world.
11: I'm feeling like the top
1: one question remained. Could he prove the world wrong by defeating me? At EVO USA, Arslan answered that question with unmatched skill. Defeating me to claim an unprecedented double victory. In a single year, he rewrote history, establishing himself as the undisputed king of Tekken.
0: Defeating me, of statement wo maine wahan pe apne liye create ki ke now I am the best in the world. Winning two EVOs in a year, abhi tak kisi ne kiya nahi tha life mein.
1: His dominance silenced skeptics who had called his earlier successes a fluke.
11: People were still saying it was a fluke for some reason. But after the second time, maybe third time, I was just like, okay, watch out for this guy.
12: So people calling it a fluke, that's just them not getting what they want from it. But me, I love to see how it develops and change up. So was it a fluke? I don't think so.
13: At first, I could see why people say maybe it's a fluke, because everyone loses. And you know, it was his first time being on the scene. So everyone expected, of course, a need to win. But you know, once he's done it consistently, and not even just beating me, beating everyone else, it's like, it's not a fluke, and he's just really good. So that's just what it is.
0: बहुत tweets थी. I don't know how much tweet, लेकिन मैं trend कर रहा था उस वक्त पूरे USA के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी. पाकिस्तान में कोई third number पे, USA के अंदर पहले number पे मैं trend कर रहा था उस वक्त. USA is massive. तो वहाँ पे trend करना is a huge thing. और EVO की वजह से I was trending in USA. I was getting a lot of followers. और लोग दुनिया के जहाँ से भी हैं tweets कर रहे हैं, फैला रहे हैं इस चीज़ को जितना फैला सकते हैं. अब मैं ट्विटर से थोड़ा फेमिलियर होने पड़ा था तब तक. और फिर मैंने सजदा किया, वो ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया था.
14: paying respect. I love what I'm seeing there. Beautiful.
0: और वो वाली चीज़ बहुत वायरल गई. उस चीज़ों को लोगों ने बहुत पसंद किया. फिर लोगों ने सर्च करने लग पड़े, पाकिस्तान के बारे में सर्च होने लग पड़ी, इस्लाम के बारे में सर्च होने लग पड़ी, सजदा क्यों किया गया, अरसलान के बारे में सर्च होने लग पड़ी, स्टोरीज लिखी गई, आर्टिकल्स लगने लग पड़े, काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने कवर करना शुरू कर दिया. फैमिली तो बहुत ही हैप्पी थी, मम्मा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी. जब मुझे मेरी चीज़ बहुत हैप्पी कर रही थी उस वक्त, ये मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हैं कि मैं जीता हूँ, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है. और सबसे अच्छी चीज़ तो इमोशनल भी है, काफ़ी इमोशनल है कि अभी हमने अपनी सिस्टर की शादी करनी थी. और इवन के मम्मा का जब इंटरव्यू करोगे वो भी आपको कहेंगी कि
15: ये जापान जब पहली दफ़ा जीता ना बड़ा टूर्नामेंट, तो उस वक्त वाकई हमें पैसों की भी ज़रूरत थी, बेटी की शादी भी थी, तो ज़रूरत भी थी हमें. तो उस वक्त वाकई इतना इमोशनल हो गए थे कि हम रोने लगे. ये जब जीता है ना, सिर्फ मैं है एक दो पॉइंट से था कि ये जीत जाए, बस एक पॉइंट रह गया था कि या वो जीता या वो जीते. तो माशाल्लाह दुआ भी की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको कामयाब, यही वसीला हमारा कि अल्लाह ताला इसको बना दे.
0: हमारे पास पैसे भी नहीं थे, और मैं जो 2 लाख था, 2 लाख से सोरी ना शादी होती है, और लग भी चुका था 2 लाख. तो पैसे उसके बाद बहुत आम सी चीज़ें थी अंबर के पास, मतलब आम से ज्वेलरी, आम सा पर्स, आम से कपड़े, सारा कुछ आम सा. तो अब शादी किस तरह करना है, तो शादी के लिए भी उधार लेना पड़ना था. तो उधार दे कोई नहीं रहा था खानदान में.
15: तो बाहर कितने लोगों से पैसे मांगने के हमें मिले, लेकिन फिर मैंने कहा कि अल्लाह ताला ये जा रहा है ना, तो इसको हमारा वसीला बना दो.
0: लोग जिनसे उधार लेने जा रहे थे कि कैसे उतारेंगे मम्मा उधार, बेटा भी कुछ नहीं करता इनका, और हम उधार दे दे तो फंस जाएंगे. तो कोई उधार देने को तैयार नहीं था.
15: तब ये जीते जब, तो बस रोने लग गए थे कि खुशी से कि अल्लाह बेशक तो करीब हो के सुनता. अल्लाह कहते हैं तुम्हारी शहर से करीब हो, तो वाकई से सुना. फिर हम रोने लग गए. तो जाके मैं सजदे में गिर गई थी कि अल्लाह ने इतना करीब हो किसे. वो मेरा इमोशन पहली दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस वाकई अल्लाह ने सुना था.
0: और यही चीज़ काफ़ी अच्छी हुई मेरे लिए और मम्मा के लिए और अंबर के लिए कि मैं कर सका, मैं जरिया बन सका अपनी इस बहन की शादी करने का.
1: Arslan Ash's journey is a story of heart, determination, and unstoppable willpower. From humble beginnings, he rose to become the undefeated champion of Tekken, breaking every limit. But now, the weight of the world rests on his shoulders. He's just one title away from securing his legacy as the greatest Tekken 7 player of all time, if he wins the TWT Finals.
3: Ruslan, big day. What are your thoughts?
4: बस प्रेशर में नहीं कोशिश नहीं कर रहा ना नॉर्मल जितना रह सके बंदा वो है कि उस तरह का ठीक है बाकी जो रहा अलग मंजिल हाँ रेडी हाँ मैं खुद तो रेडी नींद पूरी आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है कि आपकी नींद पूरी है तो वो तो पूरी है कल परफॉर्म तो अच्छा किया काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया अभी आज का मैं लोहा इससे वो काफ़ी अच्छा किया तो वो है उसके बाद उल्सा सारे कोरियन ही आए हैं छह तो कोरियन है एक जापानीज है उसके एक पाकिस्तानी देखते हैं क्या होता है
3: पाकिस्तानी अब आप ही हो खाली इस बार
4: हमेशा ऐसे होता है एक पाकिस्तानी होता है लेकिन वो जीत जाता
0: एक रात पहले मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि नी ने मुझे एक दफ़ा एडवाइस की थी मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है प्लेयर से खेलने से पहले वो कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि मैं प्लेयर की गेम वॉच नहीं करता उनका स्टाइल नहीं देखता मैं बस करैक्टर को देखता हूँ उनके मैंने पूछा ऐसा क्यों है कहता है क्योंकि जब लोग गेम इन रियल टाइम अपनी गेम चेंज कर लेते हैं तो आप सोच के कुछ हो जाते होता कुछ हो रहा है तो मुझे नी की बात काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा मैंने लैब नहीं करना प्लेयर्स को देखना नहीं है मैं करैक्टर्स को लैब कर लूँगा अगले दिन मेरा मैच हो रहा है लोहा इसलिए लोहा के करैक्टर्स देख लेता हूँ उनके करैक्टर्स के मूव्स रिमाइंड कर लेता हूँ हर चीज़ लेकिन हाँ मैं स्पेसिफिकली लोहा को स्टडी नहीं करूँगा शाह होता है उन्हें गेम प्ले ही चेंज कर ले सारी की सारी
3: भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है
16: ये हैंड वॉल ये आप ठंडे हाथों से गेम नहीं खेल सकते लाइक अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप कंफर्टेबली रहते हो आपसे दुबते नहीं हैं बेटा तो हाथ का वार्म होना बहुत ज़रूरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये मत ही गाने में बोलता हूँ Hi, this is Ruslan Ash. I want to say thanks to Tekken 7. This game gave me everything, respect, money, fame. It means a lot to me. And I just want to say thanks again. I'm here because of Tekken 7.
17: To be honest, I want Arsene to take it. But Lohai has also been playing out of his mind. So it's between them two. And they're playing in the second match. So I don't know, man. I don't know.
1: The crowd buzzes with electric energy as Ruslan Ash faces Lohai in a high-stakes battle. The tension is thick, and every move matters.
18: One of these two players will meet him there later on today, but which one will it be? Deal with this? Come from behind?
19: Oh, that is game number one for Lohai.
1: Lohai takes the first round, leaving everyone on the edge of their seats.
0: बहुत टफ चला गया था लोहाई वाला मैच पूरा का पूरा टॉप 80 इतना टफ था पर लोहाई का मैच पहला राउंड वो जीत गया तो आतिफ ने मुझे कहा था कि तुम ये ना लो नॉकटिस मैं नॉकटिस खेल रहा था और मैंने खुद भी कहा था मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ना लूँ मैं कुनी मिर्च से ले लेता हूँ क्योंकि मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा तो आतिफ वाज़ लाइक हाँ तुम उसके साथ खेलो कुनी मिर्च से और उसकी गलतियाँ देखो
1: In the second round, Ruslan counters with precise attacks, breaking Lohai's defense. The crowd erupts as he claims the round.
12: Ruslan looking good in that last game, and Nee comes up over
18: the stage. Oh my God!
12: Oh, I almost spit my water out, bro. You can't.
1: Nee, coaching Lohai from the sidelines, knows that defeating Ruslan will clear his own path to the throne.
12: I did not. Oh my God! This is crazy, bro. Do y'all not understand? This is crazy.
1: Ruslan lands a perfect combo, sealing the victory in a thrilling finish. The tension isn't just in the arena, it pulses through Lahore, where every move grips the hearts of fans.
4: नहीं ज़फीना का काफ़ी लोगों को पता लग गया लेकिन मैं नॉकटिस
20: बता रहे ना वीक भी होगी ज़फीना
4: हाँ नर्क भी होगा पता है आपको तो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाकी आप तो कहाँ साथ हैं और
0: देखते हैं क्या
20: होता है। मानो भी साथ।
0: मानो भी वैसे तो जीतना है तो मानो ने जिताना मानो मानो आपने जिताना ठीक यही जिताएगी हमें ठीक है
20: मानो मानो दुआ करोगे आप
0: मानो भी दुआ करेगी।
1: Women have always played key roles in Arslan's life, from his mother to the iconic female Tekken characters. Now, Arslan welcomes two more important women, his wife and newborn daughter. Could they be his lucky charm?
0: हाँ मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं शादी के बाद दो ही वो जीत गया था और शादी से पहले मुझे बड़ी अजीब सी बातें सुनने को मिलती थी जो कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आई थिंक दुनिया है तो आपको हर बंदे की बात नहीं सुननी चाहिए। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि शादी के बाद में आप उस तरह से नहीं खेल पाएंगे। इवन एक करेक्टर है गायल तो वो जब जीतता है ना वो बोलता है कि तुम जाओ और शादी कर लो मतलब गो एंड हैव बेबीज इस तरह करके बोलता है। जब शादी कर ली जिम्मेदारियाँ आ गई बेबी आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप गए अब शादी वाले अब पेरेंट बन चुके हो अब घर बैठो आप बच्चे पालो जाके अब तुम तो चैम्पियन तो कहीं कभी नहीं बनने वाले। लेकिन आप अभी देखें रिसेंट वर्ल्ड के अंदर आप लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं मेसी रोनाल्डो के उनके बच्चे हैं लेकिन स्टिल दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है ये स्टिग्मा बिल्कुल कि ऐसा अगर हो गया शादी हो गई तो आप जीत नहीं सकते। लेकिन मैं शादी के बाद दो चैम्पियनशिप भी वो फिर जीता और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी और बेटी रहमत होती है तो मेरी बेटी काफ़ी मुबारक रहेगी।
1: Arslan Ash challenges outdated beliefs. While the drama escalates as Nee enters the harsh losers bracket to face Rangchu.
18: There you go.
19: But what if you like the legend himself, the Bryan player himself? Make some noise if you would like Nee to take the set.
18: All right, here we go. Already blocking. Big one. Oh! Staying alive to fight another round. Is this the shift that he needed? Is this the momentum that he needed?
19: Oh!
18: What's gonna happen?
19: I can't believe it! Oh my God!
18: What happened there? All right, guys, here we go. Final game between these two. Give it up for them.
19: Yo, make some noise for these guys, bro. The Tekken is going so high right now. Let's be careful. Has to be careful.
1: In a shocking twist, Rangchu eliminates Nee in losers' top eight, sending shockwaves through the arena.
18: Is moving on, and Nee unfortunately eliminated at seventh place here at TWT.
1: Nee's chance slips away for the final time. Will Arslan seize the opportunity and make it to the finals?
19: Remember, this is Tekken 7. We're talking about Nee. Make some noise as he is eliminated from the final Tekken 7 Tekken World Tour tournament.
1: Nee's elimination shakes the community, but for Arslan, it brings a sigh of relief. Was he truly ready to face the legend? Or did fate spare him this time?
0: मैं भी घबरा रहा था क्योंकि क्या सीन है कि अब जब आप अपने ओपोनेंट से काफ़ी दफ़ा खेल लेते हो तो उसको आप अपनी चीज़ें बता देते हो काफ़ी ज़्यादा अपना गेम प्लान भी शो कर देते हो मतलब ये तो नीट टू टॉप क्लास ले रहा है यानी कि मेरे से हमेशा हारता ही जाएगा और वो जिस तरह क्रेजी है वो अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो वो हरा कर ही रहता है उस चीज़ को।
1: जस्ट एज द रोड सीम्स टू क्लियर A familiar challenge appears. Ulsan, the player who defeated Arslan in the 2022 TWT Finals, now stands in his way to glory. The stage is set. The tension is unbearable. Can Arslan overcome his past and reclaim his crown? Or will history repeat itself? Hearts race. Breaths are held, and the atmosphere is electric. Arslan feels the weight of the moment.
18: He's got the bomb.
19: Trying to steal.
2: Round one.
18: Well, she is definitely Fight. Out here to steal some hearts. Can she do it right now? Ulsan, I talked about this throughout. He has a sliver.
19: Oh, went for backswing blow again. Arslan says no. Just a small dash forward.
0: Unke Ulsan wala match, I think main zindagi mein kabhi itna tough match nahi khela life mein jitna Ulsan aur mera match tha. Winners final.
18: Both of them work. Final Fight. Round here, one apiece.
19: Catching the sidestep on top of it. Goes for the spin, not gonna work out. 1-2-2.
18: He's definitely brought some of this stuff that he's been studying and labbing. Ooh. Oh, and another big block. Again, on the down three. He's gonna have to watch out.
19: Ulsan asking the crowd for more. This is a race to three, and Ulsan is asking for more.
12: 14 seconds left on the clock.
18: Arsene has access to range drive now. Oh, he's going to get it. Then the follow-up, the big sweep. I can't believe he's...
0: मतलब वो मैच ऐसा था कि अगर मैं हार जाता मैच तो मैं इतना डिमोटिवेट हो जाता था क्योंकि उस पॉइंट पर हारकर आप हार्ड अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो तो वो मैच जीतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था
19: Yo. There's the Pakistan flag in the crowd. I saw two of those bad boys.
2: I'm just going to take a page from Steve. Good ass Tekken.
21: Good
2: ass Tekken.
21: Good.
2: Everybody.
22: I'm going to be real, man. I just want to reset.
21: Two more. Arthur.
18: I love Arthur.
21: Oh, my
18: God. Here we go.
1: The match is intense, with every move increasing the tension.
18: In the winner's side grand final. Arthur fighting Gary.
1: In a show of pure skill and determination, Arslan defeats Ulsan, securing his place in the grand finals.
19: Achim comes out. Oh my God!
18: I can't believe the sequence is
23: working.
18: Okay. Say a thing, but look at that. Arslan standing strong, moving
9: close. He's close.
18: Look, he's emotional right now.
9: He's right there, bro.
18: He's so close.
0: उसके बाद बैक से जाके मैं literally लौट रहा था कि मैं किस तरह जीता हूँ. वाकई मुझसे वो मेरे मोशंस आप देखोगे कि मैं बहुत ज़ोर से मैंने वो किया था जीत के और आतिफ भी आया था और आई वाज लाइक सिटिंग देयर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स और अपना हेड डाउन किया हुआ था और वो बहुत इंटेंस मोमेंट था मेरे लिए उतना इंटेंस मैच मैंने नहीं खेला.
1: नाउ द स्टेक्स आर इवन हायर एज उल्सान प्रिपेयर्स टू फेस CBM. द विनर ऑफ दिस थ्रिलिंग मैच will meet Arslan Ash in the finals of Tekken World Tour 2023, the last Tekken 7 tournament.
18: He has to be careful. Oh, he got him! He

0: With the grand finals in sight, Arslan Ash stands on the edge of immortality. Just one win away from cementing his place as the greatest Tekken player of all time. With the crowd roaring and the light shining bright, Arslan feels the presence of something greater. His mother's prayers. His silent armor, steadying his heart and guiding his moves.
1: मैं बिलीव करता हूँ कि मैं इवन के टूर्नामेंट से पहले हर चीज़ से पहले अपनी जीत से पहले मैं उनसे दुआ भी करवाता हूँ कि आप दुआ करना आई डोंट नो कि उनके जाने के बाद मैं क्या करूँगा और कैसे सर्वाइव करूँगा और जीतूँगा कैसे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता और मैं बिलीव करता हूँ चीज़ पर कि मेरी जीत के पीछे काफ़ी ज़्यादा उनका हाथ है
2: मैंने अपनी मम्मा से वादा किया कि मैं अगर टेकन वर्ल्ड टूर जीता
1: तो हम उमरा करने जाएंगे और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर हफ्ता दो हफ्ते जितने भी हैं मैं निकालूंगा मैं मम्मा जाएंगे
2: उनकी ख्वाहिश है उमरा करना और मैं ये टेकन वर्ल्ड टूर जीतना चाहता हूँ ताकि मैं उनको उम्र पर लेकर जा सकूँ
3: And now, as the sole representative from Pakistan, in a changing world of Tekken 7 that he has personally affected, now has the opportunity to get the last title on the Infinity Gauntlet. Oh, yeah.
0: The grand finals have arrived. Arslan Ash's Tekken 7 journey reaches its climax in a final clash against CBM in the TWT 2023 grand finals.
4: I think Arslan's finally gonna finish the story.
0: The fight is fierce, every second charged with drama and anticipation. Win or lose, this moment is just a chapter in his ongoing story.
5: I don't think that's an accident at all. Katarina?
4: Katarina, we got CBM with the Noctis coming from the loser's side. He has to win 2 sets in a race to 3, and he's going up against Arslan Ash's Katarina.
5: And that's what makes me seem like, hey, I got games to play.
6: My gosh, bro, get this dude Noctis. What did that